मीडियम वेव 401.61 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। आज रविवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद माह की 15वीं तिथि, तदनुसार 6 सितंबर सन 2026। इस समय प्रातः के 5:55 और 49 सेकेंड्स हुए हैं। आरंभ हो रही है आज की प्रातःकालीन सभा।

आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। भोर की सुंदर बेला, सूर्य की धरती को स्पर्श करती किरणें, शीतल पवन का झोंका मानो कह रहा है बीते कल को छोड़कर आज का स्वागत मुस्कुरा कर करें। हर नई सुबह नया अवसर है कुछ बेहतर सोचने, कुछ अच्छा करने और अपने सपनों की ओर उड़ान भरने का। तो उठिए, गहरी सांस लीजिए और मन में विश्वास जगाइए। सकारात्मक ऊर्जा के साथ शुरुआत कीजिए नए दिन की। श्रोताओं, हम भी आ चुके हैं स्टूडियो लेकर आपके लिए मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ। आप सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। अपने रोज के रूटीन के साथ ही हमारे श्रोता अपना रेडियो सेट ऑन कर चुके हैं और उन्हें इंतजार है समाचारों का। तो देर कैसी, सुबह के 6 बजने ही वाले हैं। चलते हैं दिल्ली स्टूडियो, सुन लेते हैं समाचार आकाशवाणी दिल्ली से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं चंद्रशेखर शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितता के बीच भारत की सकल घरेलू उत्पाद दर में 7.8% की तिमाही वृद्धि उसकी आर्थिक मजबूती को दिखाती है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स SRCC के शताब्दी समारोह में कहा कि दुनिया भारत को सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बनते हुए देख रही है।
1: दुनिया भारत को फ्रेजाइल 5 बता रही थी, आज दुनिया भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनते हुए देख रही। 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है और इसी बीच जापानीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की रेटिंग अपग्रेड कर दी है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने SRCC के संस्थापक श्री राम को श्रद्धांजलि। पिछले महीने की 30 तारीख को जयपुर के परीक्षा केंद्रों में बिजली की समस्या के कारण 2,445 अभ्यर्थियों की परीक्षा पूरी नहीं हो सकी थी। छत्तीसगढ़ में जगदलपुर के राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA की विशेष अदालत ने झीरम घाटी में हुए माओवादी हमले के मामले में सभी 10 आरोपियों को दोषी ठहराया है। इस मामले में कुल 11 आरोपी थे, जिनमें से एक की मृत्यु हो गई थी। अदालत ने 2 महिलाओं सहित सभी 10 आरोपियों को 29 लोगों की हत्या और 15 को हत्या के प्रयास का दोषी पाया। सजा पर फैसला 16 सितंबर को होगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक मंडल की सिफारिश के बाद 8 उच्च न्यायालयों में नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कर दी गई है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में इसकी जानकारी दी। महिला क्रिकेट में संयुक्त अरब अमीरात के दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए 2020 एशिया कप के ग्रुप ए मैच में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। पाकिस्तान ने भारत के सामने जीत के लिए 56 रन का लक्ष्य रखा था। भारत ने 8 ओवर 4 गेंद में 3 विकेट खोकर 57 रन बनाए और आसानी से लक्ष्य हासिल कर लिया। बाएं हाथ की स्पिनर श्री चंडी ने 7 रन देकर 3 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स फाइनल में पहुंच गई है। भारतीय जोड़ी ने सेमीफाइनल मुकाबले में मलेशिया के नूर मोहम्मद अजरीन अयूब और टेन वी क्योंग को हराया। मौसम विभाग ने कल तक पूर्वोत्तर राज्यों, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, दिल्ली और मध्य प्रदेश में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी कल तक बिजली चमकने और तेज हवाओं के चलने की संभावना व्यक्त की गई है। पूर्वोत्तर राज्यों, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड में ऐसी स्थिति बने रहने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। स्वागत है आप सभी श्रोताओं का हमारे मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ में, जिसे आपने ट्यून इन किया है 747 किलो हर्ट्ज पर। आकाशवाणी लखनऊ के कार्यक्रमों को आप सुन सकते हैं न्यूज ऑन AIR ऐप और DTH के माध्यम से भी। श्रोताओं, समय है कृषि चर्चा का। आज की कृषि चर्चा में किसान भाइयों को जानकारी देंगे डॉक्टर राजेश कुमार कन्नौजिया, खरीफ फसलों में सामयिक प्रबंधन के बारे में। आपसे बातचीत की है डॉक्टर सुशील कुमार राय ने।
3: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, इस समय खरीफ की फसलें आपके खेत में खड़ी हैं, उनमें सामयिक प्रबंधन क्या कुछ करें, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं कृषि विज्ञान केंद्र फर्स्ट दरियापुर रायबरेली से वैज्ञानिक सस्य विज्ञान डॉक्टर राजेश कुमार कन्नौजिया साहब। स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि इस समय खरीफ की फसलें, चाहे मुख्य रूप से धान की फसल है, मक्का है, मिलेट्स है, दलहनी फसलें हैं, तिलहनी फसलें हैं, तो उनमें सामयिक प्रबंधन में क्या कुछ करें किसान भाई बहन।
4: नमस्कार किसान भाइयों, जैसा कि इस समय खरीफ की फसलों में मुख्य रूप से हमारे किसान भाइयों के खेतों में धान, दलहनी फसल के रूप में उड़द, मूंग, अरहर, इसके साथ ही साथ अगर हम तिलहन की बात करें तो मूंगफली और तिल है, साथ ही साथ मक्के की फसल है और मोट

0: अनाज के रूप में सावा, कोदो इत्यादि फसलें हैं। जहां तक वृद्धि की अवस्था की बात है कि इस समय फसलों की क्या अवस्थाएं हैं, तो जैसा कि किसान भाइयों ने जून से ही अपनी फसलों की बुआई प्रारंभ कर दी है और इस बार मौसम को देखते हुए किसान भाइयों ने जुलाई के अंतिम सप्ताह तक धान की रोपाई भी की है, तो ऐसे में फसलें अपनी विभिन्न अवस्थाओं में हैं। जहां तक धान की बात मुख्य रूप से की जाए तो एक तरफ पुष्पावस्था भी प्रारंभ हो रही है, कहीं फसलें गाला में हैं और कहीं पर अपनी जो ट्रिलिंग की अवस्था है वो एकदम बूम पर है। रही बात दलहनी फसलों की, तो उर्द और मूंग में फलियां तो अभी नहीं, लेकिन हाँ पुष्पावस्था है, और इसी तरीके से मूंगफली इत्यादि फसलों में भी फसलें अपनी विभिन्न अवस्थाओं में हैं।
1: डॉक्टर साहब, शुरुआत करें कि जो भी खरीफ की फसलें हैं उनमें खरपतवारों का प्रबंधन इस दशा में कैसे हो?
0: देखिए, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि बारिश के मौसम होने की वजह से इस वक्त जो भी फसलें लगाई जाती हैं उनमें खरपतवारों की समस्या बहुत ज्यादा रहती है, तो ऐसे में जहां तक खरपतवार प्रबंधन की बात है, जैसा कि खरपतवार प्रबंधन हम लोग रासायनिक और मैनुअल यानी मानवीय उससे करते हैं, तो दवाओं के द्वारा, रसायनों के द्वारा जो प्रबंधन करने का समय था वो लगभग सभी फसलों में समाप्त हो चुका है। हाँ, जैसा कि हम देखते हैं कि किसान भाई लोग धान में खरपतवार प्रबंधन के लिए जब दवाएं का प्रयोग करते हैं और फिर भी कहीं पर खरपतवार नहीं कंट्रोल हो पाते हैं, तो फिर ऐसे में मानव श्रम के द्वारा ही उसकी निकाई की जानी आवश्यक है। ठीक इसी तरीके से जो हमारी उर्द मूंग यानी कि दलहनी फसलें हैं, या हम मूंगफली की बात करें, इसमें जो है मानव श्रम के द्वारा ही हम अपनी फसलों की स्थिति को देखते हुए कि उसमें खरपतवार का प्रकोप किस तरह से है, हम उसका नियंत्रण करने का प्रयास करें और अपनी फसल को वृद्धि के लिए अनुकूल दशा दें,
1: यानी खरपतवारों से मुक्त रखें जो भी खरीफ की फसलें हैं उनके खेत को, ताकि जो भी खुराक दिया है उससे फसल की बढ़वार हो और आगे चल करके उसमें अच्छा पुष्पन पल्लवन हो। डॉक्टर साहब, लगे हाथ जो पोषक तत्वों की मात्रा है उसका प्रयोग कब कब कैसे करें, यानी फसल की भूख कैसे मिटाएं?
0: फसलों के जहां तक भूख की बात है, भोजन व्यवस्था की बात है, तो ऐसे में हमारी जो धान की फसल है लगभग गाला की अवस्था में है, और इस समय क्योंकि किसान भाइयों ने बुआई के वक्त और ब्यास यानी किल्ले निकलते वक्त तो अपनी धान की फसल में खाद प्रबंधन कर ही दिया है, अब इस वक्त गाला में जैसे ही हमारी फसल आए तो जो 25% हमारी नाइट्रोजन की खुराक है उसकी पूर्ति अवश्य करें। साथ ही साथ कहीं पर अगर जिंक की समस्या दिखाई दे रही है तो जिंक का प्रयोग करें। जहां तक दलहनी फसलों की बात है, मुख्य रूप से उर्द मूंग की बात है, तो इसमें सल्फर की आवश्यकता रहती है किसान भाइयों को प्रयोग करने,
1: यानी गंधक।
0: गंधक, जी हाँ, तो इसमें जो है गंधक का छिड़काव करें। साथ ही साथ मूंगफली की फसल में भी गंधक की आवश्यकता होती है। आम तौर पर हम लोग बुआई के समय इसका रिकमेंडेड करते हैं, संस्तुत करते हैं, लेकिन अपनी फसल को अच्छा खुराक देने के मद्देनजर हमें एक सल्फर का अगर हम स्प्रे कर देते हैं, जो दानेदार सल्फर आजकल हमें बाजार में मिलती है, वो 1 किलो सल्फर 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होती है, उसका उपयुक्त पानी में घोल बनाकर उसका छिड़काव करें। इससे फसलों में जो हमारी फलियां हैं और दानों का विकास है वो अच्छा होगा।
1: डॉक्टर साहब, किसान भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे खरीफ फसलों में सामयिक प्रबंधन के बारे में। अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें या आपके कृषि विज्ञान केंद्र आना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: मेरा मोबाइल नंबर है 9721462198972114611 9711 4611।
1: डॉक्टर राजेश कुमार कनौजिया साहब, आज आप कार्यक्रम में आए और खरीफ फसलों में सामयिक प्रबंधन क्या कुछ करें, कैसे करें किसान भाई बहन, इसके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी। आपके बहुमूल्य सुझाव पर किसान भाई बहन अवश्य ध्यान देंगे। डॉक्टर साहब, आज कार्यक्रम में आने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: इंसान के भीतर यदि शांति है तो वो सबसे सुखी है, अगर दया है तो वो श्रेष्ठ है, और अगर स्वस्थ है तो वो सबसे भाग्यशाली है। क्योंकि इंसान के भीतर अगर संतोष है तभी वो सबसे अमीर है। और खुशियों के लिए श्रोताओं साधन की नहीं संतोष की आवश्यकता होती है। आइए सुनते हैं आज का सुविचार। आलेख एवं वाचन स्वर डॉक्टर सूर्य प्रकाश शुक्ल का है।
3: जीवन में सुख शांति के लिए संतोष आवश्यक है, क्योंकि संतोष में ही सुख है। संतोषम परमम सुखम, अन्यत्र भी कहा गया है, शांति तुल्यम तपो नास्ति न संतोषात परम सुखम।

न तृष्णायाः परो व्याधिः न च धर्मो दया परः। अर्थात शांति से बढ़कर कोई तप नहीं है, संतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं है, तृष्णा से बड़ा कोई रोग नहीं और दया से श्रेष्ठ कोई धर्म नहीं है। संतोष का अर्थ है संतुष्टि, तृप्ति या मन की शांति। यह वह मानसिक अवस्था है जिसमें व्यक्ति अपनी वर्तमान स्थिति और उपलब्ध संसाधनों में प्रसन्न रहता है तथा अत्यधिक लोभ या असंतुष्टि से मुक्त रहता है। भारतीय संस्कृति में इसे सबसे बड़ा धन माना गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, गोधन गजधन वाजिधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। व्यक्ति के अंदर संतोष आ जाने पर वह अनंत एवं अखंड सुख का भागी हो जाता है। संतोष एव पुरुषस्य परम निधानम, यह एक प्रसिद्ध संस्कृत सुभाषित है जिसमें संतोष के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। संपूर्ण श्लोक इस प्रकार है, सर्पापि बन्ति पवनम् न च दुर्बलास्ते शुष्कैस्तृणैः।

0: आनम, अर्थात सांप केवल वायु पीकर रहते हैं फिर भी वे दुर्बल नहीं होते। जंगल के हाथी सूखी घास खाकर भी बलवान होते हैं। मुनिजन रूखा सूखा भोजन ग्रहण कर अपना समय व्यतीत कर लेते हैं। इन सभी उदाहरणों से यह सिद्ध होता है कि संतोष ही मनुष्य का परम धन है, सबसे बड़ा खजाना है। मनुष्य की इच्छाएं कामनाएं अनंत हैं। एक की पूर्ति होती नहीं है कि दूसरी कामना उत्पन्न हो जाती है। मनुष्य उनकी पूर्ति में निरंतर संलग्न रहता है। जब मनुष्य की इच्छाओं की पूर्ति में बाधा उत्पन्न होती है तो वह दुखी हो जाता है। कामनाओं की पूर्ति करने से कामनाएं कभी शांत नहीं होती हैं, मन उनकी पूर्ति के लिए अशांत रहता है। इस संबंध में भर्तृहरि का यह कथन बहुत समीचीन है कि जिसके पास कुछ नहीं है वो 100 रुपए की कामना करता है, 100 प्राप्त होने पर 1000 की इच्छा उत्पन्न होती है, 1000 प्राप्त होने पर 10000, पुनः 10000 से 1 लाख की इच्छा, लाख के पश्चात राज्य पाने की इच्छा, फिर इंद्रलोक प्राप्त करने की कामना जागृत होती है, इंद्रपद प्राप्त ब्रह्मा होना चाहता है। इस प्रकार कामनाओं की कभी संपूर्णता पूर्ति नहीं हो पाती, अपितु कामनाएं निरंतर बढ़ती रहती हैं। इन्हें रोक कर ही संतोष का आश्रयण कर सुख शांति पाई जा सकती है। कठोपनिषद में जब नचिकेता ने ब्रह्म विद्या के संबंध में जिज्ञासा प्रकट की तब यमराज ने नचिकेता को अनेक दिव्य भौतिक पदार्थ देने का प्रस्ताव रखा। नचिकेता ने अपने ब्रह्म विद्या विषयक वरदान की सार्थकता का बार बार समर्थन करते हुए कहा कि मनुष्य धन से कभी संतुष्ट नहीं हो सकता है। धन का भोग करते करते जीवन नष्ट हो जाता है, किंतु जीवन को शाश्वत शांति नहीं मिलती। अतः भौतिक संसाधनों में अनासक्त रहकर संतोष पूर्वक रहने से ही सुख मिलता है। इस सत रज तम रूप त्रिगुणात्मक संसार में सतोगुण ही सुख शांति प्रदायक है। संतोष सतोगुण का प्रधान लक्षण है। अतः भगवान कृष्ण भी संतुष्टि के लिए सदैव संतोष करने का उपदेश देते हैं। यहाँ विशेष रूप से यह ध्यातव्य है कि संसार की यथोपलब्ध वस्तुओं से संतुष्ट रहना चाहिए, किंतु विद्याध्ययन परोपकार आदि में कभी भी तृप्ति का अनुभव करके शांत नहीं बैठना चाहिए, निरंतर यत्नशील रहना चाहिए।
1: अभी आप सुन रहे थे आज का सुविचार, विषय था संतोष। वाचन स्वर डॉक्टर सूर्य प्रकाश शुक्ल का था। और अब आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना।

ईश्वर की पूजा मात्र अनुष्ठान नहीं बल्कि संकल्प है। सत्य की राह पे चलना है, धर्म का दीप जलाना है, ईश्वर की शरण में रहकर ही जीवन को सफल बनाना है।

जीवन में तेरा मेरा का भाव अज्ञानता है। जो कुछ भी है वो सब उसी परम पिता परमेश्वर का है, और जब हम अपना सर्वस्व ईश्वर को अर्पित कर देते हैं तो जीवन से अहंकार और दुख स्वयं समाप्त हो जाते हैं।

कालों के काल महाकाल, भक्तों के भोले शंकर, जो विष पीकर भी संसार को जीवन का अमृत देते हैं, आइए महादेव का स्मरण करें।

आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से आप सुन रहे हैं मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ वैशाली के साथ। और अब आइए करते हैं प्रभु श्री राम की भक्ति, सुनते हैं श्री रामचरितमानस से आज के प्रसंग की संगीतमय प्रस्तुति। आज सुनेंगे भाग 285 में हनुमान जी द्वारा फल फूल के आहार के दौरान वाटिका को उजाड़ देने और रावण द्वारा उन्हें पकड़ने के प्रयास का प्रसंग।

राक्षस इतने बलवान और बड़े योद्धा हैं, उन्हें नन्हे नन्हे वानर भला किस प्रकार मार सकेंगे? सीता जी का ये संशय हनुमान ने सुमेरु जैसा अपना आकार दिखाकर पल भर में मिटा दिया। फिर छोटा रूप धारण कर बोले, हे माता, वानरों में बलबुद्धि तो नहीं होती, किंतु प्रभु की कृपा से छोटा सांप भी गरुड़ को खा सकता है। सीता जी को सभी प्रकार से संतुष्ट करके पवन पुत्र ने अपनी भूख मिटाने के लिए न केवल फल फूलों का आहार करना आरंभ किया, बल्कि इस क्रम में पूरी वाटिका ही उजाड़ डाली। रोक टोक करने वाले रखवालों को मसल कुचल कर मार डाला। विध्वंस का समाचार सुनकर रावण ने बंदर को पकड़ लाने के लिए योद्धा भेजे, उनका संहार सुन अपने पुत्र अक्षय कुमार को पठाया। एक भयंकर गर्जन के साथ जब हनुमान ने एक वृक्ष उखाड़कर उसे भी मार डाला, तो रावण के क्रोध की सीमा न रही। उसने अपने ज्येष्ठ पुत्र मेघनाथ को आदेश दिया कि वो जाकर उस वानर को बांध कर ले आए।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से आज के प्रसंग की संगीतमय प्रस्तुति। गायक कलाकार थे सुरेश वाडिकर और अनुराधा पौडवाल। आकाशवाणी की इस प्रस्तुति के संगीत संयोजक सतीश भाटिया। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से प्रसारित किया जा रहा था। 747 किलोहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र और सुन रहे हैं मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ वैशाली के साथ।
1: श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं।
2: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल, आज के मेहमान, विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती, आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
0: प्रायोजित कार्यक्रम NCERT आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से। ये आकाशवाणी लखनऊ है। सुबह के 6:55 होने वाले हैं। सुनेंगे संस्कृत समाचार।
3: आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम्, प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी उक्तवान् यत् वैश्विक अनिश्चिततायाः मध्ये 8.7% त्रैमासिक वृद्धिः भारतस्य आर्थिक सामर्थ्यं प्रदर्शयति। सः उक्तवान् यत् भारतेन नीतिसम्बद्ध गतिरोधात् नीतिसम्बद्ध गतिशीलतां प्रति दीर्घा यात्रा कृता। ह्यः नवदिल्ल्यां श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स इत्यस्य महाविद्यालयस्य शताब्दी समारोहे सभां सम्बोधयन् श्रीमोदी उक्तवान् यत् विश्वं भारतं तीव्रगत्या वर्धमानां प्रमुखां अर्थव्यवस्थां भवितुं पश्यति। प्रधानमन्त्रिणा अद्यतनोपलब्धीनां पूर्वकालीनैः संघर्षैः सह तुलनां कुर्वता उक्तं यत् आतंकवादः पराजितः अस्ति, अथ च सशस्त्रबलानि स्वभूमावेव शत्रून् विरुद्धं दृढतया प्रहारं कुर्वन्ति। जम्मूकश्मीरतः पूर्वोत्तर भारत पर्यन्तं शांतिश्च पुनः स्थापिता अस्ति।
4: दुनिया भारत को फ्रजाइल फाइव बता रही थी, आज दुनिया भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनने ते हुए देख रही। अभी हफ्ते भर में ही भारत की इकोनॉमी को लेकर कई सारी पॉजिटिव खबरें आई। 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है और इसी बीच जापानीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की रेटिंग अपग्रेड कर दी है। ये 7.8% की ग्रोथ भी ऐसे समय में आई है जब वेस्ट एशिया का युद्ध चल रहा है।
3: निरंतर क्रियमाणानाम आलोचनानाम प्रत्युत्तर रूपेण प्रधानमंत्री सुदृढार्थिक तथ्यांकान प्रस्तुतवान्। असौ उक्तवान् यत् स्मार्टफोन इत्येतस्य निर्यातः अधुना 5.2 लाख करोड़ रुपयाधिकः अभवत्। प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स इत्यनेन महाविद्यालयेन विगतेषु वर्षेषु शैक्षणिकोत्कृष्टतायाः क्षेत्रे विशिष्टा प्रतिष्ठा प्राप्ता अस्ति। असौ SRCC महाविद्यालयस्य पूर्व छात्रान् अति विशिष्टान् वर्णयन् तान् OGs इति विशिष्टाधुनिकोपाधिना सम्बोधितवान्। प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् पूर्व वित्तमन्त्री अरुण जेटली अपि SRCC महाविद्यालयस्य पूर्व छात्रः आसीत्। असौ एतदपि कथितवान् यत् अस्य महाविद्यालयस्य पूर्व छात्राः प्रत्येकस्मिन् क्षेत्रे स्वकीयं विशिष्टं चिह्नं स्थापितवन्तः। प्रधानमन्त्री मोदी उक्तवान् यत् शतवर्षीयम् इदं महत्वपूर्णं चरणं महाविद्यालयस्य तथा राष्ट्रस्य शिक्षाक्षेत्रस्य च कृते अत्यन्तं महत्वपूर्ण

0: स्थापितमस्ति। असौ संस्थापकं श्रीरामं श्रद्धया स्मृत्वा तस्य स्थायिदृष्टिं प्रति सम्माननं प्रकटितवान्। राष्ट्रपति पदासीनया द्रौपदी मुर्मू इत्यनया ह्यः डॉक्टर दिनेश शर्मा इत्येषः अण्डमान निकोबार द्वीप समूहस्य उपराज्यपाल रूपेण नियुक्तः। राष्ट्रपति भवनेन प्रसारिते एकस्मिन् विज्ञप्तौ एतत् संसूचितमासीत्। डॉक्टर शर्मा 17,2000 अक्टूबर मासात् अण्डमान निकोबार द्वीप समूहस्य उपराज्यपाल रूपेण कार्यं कुर्वन्तं सेवानिवृत्तम् एडमिरल देवेन्द्र कुमार जोशीम् अनुसरिष्यति। डॉक्टर शर्मा सम्प्रति उत्तर प्रदेशतः राज्यसभा सांसदः अस्ति। असौ पूर्वं राज्यस्य उपमुख्यमन्त्री पदमपि अलंकृतवान्। भारत नेपालयोः उद्धार दलानि चिलिमे सुरंगे उद्धार कार्यं निरन्तरं कुर्वन्ति। नेपालस्थितः भारतस्य राजदूतः नवीन श्रीवास्तवः ह्यः उक्तवान् यत् उद्धार कार्यं सुकरं कर्तुं समीपस्थस्य स्याब्रुबेसी प्रदेशात् सुरंगस्य प्रवेशद्वार पर्यन्तं सम्पर्क मार्गस्य निर्माण कार्यमपि प्रचलति। भारतर्तो विज्ञान विभागेन संसूचितं यत् श्वः यावत् उत्तर पूर्वीयेषु राज्येषु उप हिमालयीय पश्चिम बंगाल सिक्किम बिहारोत्तर प्रदेशोत्तराखंड पंजाब चंडीगढ़ हरियाणा पूर्व राजस्थान दिल्ली मध्य प्रदेशेषु च अतिवृष्टेः संभावना अस्ति। महिला क्रिकेट क्रीडायां भारतेन पाकिस्तान दलं 7-0 पराजितम् इति वार्ताः।
1: स्वागत है आप सभी श्रोताओं का मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ में, जिसे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से। समय हुआ है सुबह के 7 बजे का और श्रोताओं, ये समय होता है कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा का। और आज की स्वास्थ्य चर्चा में हमारी एक्सपर्ट नीना सोनकर आप सभी श्रोताओं के लिए हर बार की तरह लेकर आई हैं महत्वपूर्ण जानकारी। आइए सुन लेते हैं आज का कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा और आज इस कार्यक्रम में क्या है खास जानकारी।
2: श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं नीना सोनकर और स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूं। श्रोताओं आज हम एक ऐसे देसी मसाले की चर्चा करेंगे जो पूर्वी भारत की रसोई में अपनी अलग ही पहचान रखता है, खासकर बिहार, बंगाल, झारखंड और ओडिशा जैसे राज्यों में। ये कोई एक मसाला नहीं बल्कि 5 मसालों का संगम है, जिसे हम कहते हैं पंचफोरन। 5 बीजों से बना ये मिश्रण केवल खाने को स्वादिष्ट नहीं बनाता बल्कि शरीर की सेहत को भी कई तरह से संबल देता है। पंचफोरन शब्द में ही इसकी विशेषता छिपी है। पंच यानी 5 और फोरन यानी तड़का, यानी 5 मसालों का तड़का। इन 5 मसालों में आमतौर पर शामिल होते हैं मेथी, कलौंजी, जीरा, सौंफ और राई। ये सभी मसाले अपने अपने स्तर पर औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं और जब इन्हें एक साथ मिलाकर तड़के में डाला जाता है तो स्वाद, सुगंध और सेहत तीनों का अद्भुत मेल सामने आता है। जब हम पंच फोरन को तेल में डालते हैं तो उसकी महक ही पेट को भूख से भर देती है। पर ये केवल स्वाद की बात नहीं है, इन बीजों के संयोजन से जो गर्मी पैदा होती है वो शरीर के पाचन तंत्र को सक्रिय कर देती है। पंच फोरन का सबसे बड़ा लाभ यही है कि ये पाचन शक्ति को सुधारता है। सौंफ और जीरा पेट की जलन को शांत करता है, गैस और अपच से राहत देता है, जबकि मेथी और राई आंतों की सफाई में मदद करते हैं। कलौंजी का काम होता है पाचन अग्नि को संतुलित करना और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाना। श्रोताओं बहुत बार जब हम भारी खाना खा लेते हैं या कुछ तला भुना ज्यादा खा लिया जाता है तो पेट में भारीपन, एसिडिटी या बदहजमी जैसी समस्याएं हो जाती हैं। ऐसे समय में पंचफोरन से बनी कोई हल्की सब्जी या दाल न केवल स्वाद को संतुलित करती है बल्कि शरीर को भीतर से राहत भी देती है। पुराने समय में जब लोग बीमार पड़ते थे या लंबे समय तक कुछ भारी नहीं खा सकते थे तो पंचफोरन के तड़के वाली पतली खिचड़ी या सादी दाल दी जाती थी, जिससे धीरे धीरे पाचन लौटे और शरीर को आराम मिले। एक और बात जो पंचफोरन को खास बनाती है वो है इसका संतुलन। 5 अलग अलग प्रकृति के मसालों का ये मेल शरीर में गर्मी और ठंडक का समरस संतुलन बनाए रखता है। सर्दी के मौसम में ये शरीर को ऊष्मा देता है, वहीं गर्मियों में पाचन को

0: संतुलित रखता है। यही कारण है कि इसे साल भर के भोजन में शामिल करना लाभकारी माना जाता है। अब हम बात करेंगे इसके औषधीय पक्ष की। पंचफोरन में मौजूद सौंफ आंखों के लिए फायदेमंद मानी जाती है, खासकर जब इसका नियमित सेवन हो। जीरा शरीर की सूजन को कम करता है और मेथी शुगर के स्तर को नियंत्रित रखने में सहायक होती है। कलौंजी का उपयोग त्वचा और बालों के लिए भी होता है और राई शरीर को भीतर से गर्म रखने का काम करती है। इन सभी मसालों के गुण अलग अलग होते हैं, लेकिन जब इन्हें एक साथ प्रयोग किया जाता है तो उनका संयुक्त प्रभाव और भी प्रभावशाली हो जाता है। पंचफोरन का एक और सुंदर पहलू ये है कि ये पूरी तरह देसी और प्राकृतिक है। इसमें किसी तरह की मिलावट नहीं होती, कोई रसायन नहीं होता और इसे आसानी से घर में भी तैयार किया जा सकता है। पांच मसालों को समान अनुपात में लेकर आप घर पर पंचफोरन बना सकते हैं और इसे रोजाना की दालों, सब्जियों, खिचड़ी या अचार में उपयोग कर सकते हैं। श्रोताओं, अक्सर हम बाजार के नए नए मसाले मिक्स या रेडीमेड तड़के की ओर आकर्षित हो जाते हैं, जिनमें स्वाद तो होता है लेकिन पोषण नाम मात्र का भी नहीं। जबकि पंचफोरन जैसे देसी मसाले, देसी मिश्रण हमें ये याद दिलाते हैं कि हमारी परंपरा में ही स्वास्थ्य का गहरा विज्ञान छिपा है। ये मसाला केवल भोजन को चटपटा बनाने के लिए ही नहीं, बल्कि शरीर को सशक्त और पाचन को बेहतर रखने के लिए है। तो क्यों ना हम आज से अपनी रसोई में पंचफोरन को फिर से जगह दें। ये न केवल स्वाद का खजाना है बल्कि सेहत की चाबी भी है। ये उस परंपरा का हिस्सा है जिसमें मसाले सिर्फ मसाले नहीं होते बल्कि औषधियाँ होती थीं। आज की स्वास्थ्य चर्चा में बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। नीना सोनकर को दीजिए अनुमति। सभी को नमस्कार।
1: स्वाद और स्वास्थ्य का संतुलन पंचफोरन। अभी आप सुन रहे थे स्वास्थ्य चर्चा में इस विषय पर जानकारी दे रही थी नीना सोनकर। नमस्ते लखनऊ मॉर्निंग प्रोग्राम, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ से 747 किलो हर्ट्ज पर। और अब वक्त है आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में जानकारी का, जिन्हें आप सुन सकेंगे आज रविवार आकाशवाणी लखनऊ से। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रात 9:30 पर प्रसारित किया जाएगा रूपकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम। रात 10:00 रविवासरी अखिल भारतीय संगीत सभा के अंतर्गत सुनिएगा एनआर प्रशांत का कर्नाटकी गायन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। आज सुबह 9:15 पर सामयिक चर्चा में आप सुनेंगे प्रदेश में इन्फ्लुएंजा ए यानी H1N1 के बढ़ते मामलों के बीच इस संक्रामक बीमारी से बचाव और लखनऊ के अस्पतालों में की गई व्यवस्थाओं के बारे में लखनऊ जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर NB सिंह से राघवेंद्र त्रिपाठी की बातचीत। उर्दू कार्यक्रम के तहत सुबह 9:30 पर समात फरमाइएगा कलीम सिफात इस्लाही की तकरीर, बाहमी इत्तेहाद के फरोग में उर्दू जबान का किरदार। इसके अलावा मोहम्मद फर्रुख जमाल की मुख्तसर तकरीर का मौजू होगा अकलियतों की फलाह के लिए वजीर आजम की खास स्कीम सीखो और कमाओ योजना। के अलावा कलामे शायर में आज आप सुनेंगे खुर्शीद जफर हल्लौरी से उनका ताजा कलाम, पेशकश आकाशवाणी के गोरखपुर मरकज की होगी। पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम श्रोता सुनेंगे शाम 7:31 पर, प्रस्तुति सुमोना एस पांडेय और नीना सोनकर की होगी। पंकज पांडेय का काव्य पाठ सुनना ना भूलें आज रात 8:00 हिंदी कार्यक्रम में। फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर सुनिए दिन में 3:30 पर। आज इस कार्यक्रम में विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर अमित कुमार सिंह, वरिष्ठ किडनी रोग विशेषज्ञ। विषय होगा किडनी रोग, कारण, लक्षण और बचाव। संचालन सुभाष खन्ना का होगा। दिन में 3:15 पर संस्कृत कार्यक्रम में सुनना ना भूलें डॉक्टर सूर्य प्रकाश शुक्ल की संस्कृत वार्ता श्री कृष्णस्य ब्रह्मत्वम। प्रस्तुत करता होंगी डॉक्टर शीबा राकेश। रिंकी विश्वकर्मा के गाए अवधि लोकगीतों का आनंद लीजिएगा लोक रंग कार्यक्रम में सुबह 9:50 पर और लोक माधुरी में दिन में 2:45 पर। लोक झंकार कार्यक्रम में शाम 4:30 पर आप सुनेंगे रामदास व साथी का आल्हा गायन। दोपहर 12:00 बाल मंच कार्यक्रम में नन्हे साथी सुनेंगे सिराज अहमद की लिखी कहानी मिशन हेल्दी डब्लू। बाल प्रतिभागी होंगे हुमैद अहमद। आज इतवार है, कार्यक्रम में दिन में 1:15 पर सुनना ना भूलें अमन साहू की लिखी झलकी टिश्यू का इश्यू। प्रस्तुतकर्ता और निर्देशक होंगे अतिश कुमार श्रीवास्तव। दिन में

1:30 पर अक्षवट कार्यक्रम में आप सुनेंगे यूरो ऑन्कोलॉजिस्ट व रोबोटिक सर्जन डॉक्टर अंशुमन सिंह से की गई भेंटवार्ता, सजगता ही सुरक्षा, बुजुर्गों की प्रोस्टेट संबंधी समस्याएं और उपचार, इस विषय पर बातचीत करेंगी डॉक्टर अलका चौधरी। धान की फसल में सामयिक प्रबंधन, इस विषय पर सुनिएगा डॉक्टर अजय कृष्ण से की गई भेंटवार्ता। विज्ञान और किसान कार्यक्रम में आज दिन में 2:30 पर भेंट करता होंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय। शाम 4 बजे का समय होता है संकल्प कार्यक्रम का। आज इस कार्यक्रम में सुनिए दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्रक्रिया, आवश्यकता एवं लाभ विषय पर विकास मिश्रा से की गई भेंटवार्ता। भेंट करता होंगे सुरेंद्र राजेश्वरी। कैच द रेन, युवा साथी सुने नंद किशोर वर्मा से की गई ये भेंटवार्ता युववाणी कार्यक्रम में शाम 5:10 पर। भेंट करता होंगे रमनप्रीत सिंह भाटिया। 5:45 पर शाम नई उड़ान कार्यक्रम में नई सुबह के लोक श्रृंखला में आज जानकारी का विषय होगा बदलाव के युवा नायक, जमीनी नव प्रवर्तन, सामाजिक नेतृत्व और बदलाव के प्रेरक। प्रस्तुत करता होंगे डॉक्टर उमाशंकर सिंह। लोकायतन कार्यक्रम में शाम 6:30 पर लोकभाषा कवि गोष्ठी का प्रसारण किया जाएगा। प्रतिभागी कवि होंगे विजय शंकर मिश्र भास्कर, हेमलता पांडेय हेमा, संचालन प्रदीप कुमार वर्मा महाजन का होगा। आज शाम 6:50 पर खेती किसानी कार्यक्रम में सफलता की कहानी क्रम में हमारे किसान भाई सुनेंगे शुभम द्विवेदी से की गई भेंटवार्ता, शिमला मिर्च उत्पादन, इस विषय पर बातचीत करेंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय। तो ये थे आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रम, जिन्हें आप सुन सकेंगे आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से। नमस्ते लखनऊ कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ से, वैशाली के साथ हाजिर होते हैं कुछ ही पलों में कार्यक्रम विविधा लेकर।

स्वागत और हार्दिक अभिनंदन आप सभी का आज की विविधा में। आपको प्यार भरा नमस्कार। जरा कल्पना कीजिए, आप कमरे में अकेले बैठे हैं, बाहर घना जंगल है, हवाएं तेज चल रही हैं और अचानक आपके सामने एक रहस्यमयी किला दिखाई दे जाए। आप उसका भारी दरवाजा खोलते हैं और अगले ही क्षण पहुंच जाते हैं किसी दूसरी दुनिया में। कहीं राजा महाराजाओं का दौर है, कहीं अंतरिक्ष में नए ग्रह खोजे जा रहे हैं, तो कहीं कोई जासूस उलझी हुई गुत्थी सुलझा रहा है, कहीं एक साधारण सा बच्चा अपने साहस से पूरी दुनिया बदलने निकल पड़ा है। अब सवाल है, आप कमरे से बाहर निकले ही नहीं, फिर इतनी दूर कैसे पहुंच गए? तो जवाब है दोस्तों, एक किताब के सहारे। किताब कागज पर छपे शब्दों का ढेर भर नहीं होती, वो एक ऐसा दरवाजा है जिसे खोलते ही समय, स्थान और कल्पना की सारी सीमाएं टूट जाती हैं। शायद इसीलिए किताबों को दिल और दिमाग की सबसे भरोसेमंद कि वे बोलती नहीं है, लेकिन उनके शब्द हमारे भीतर बहुत देर तक गूंजते रहते हैं। आप उदास हो तो कोई कहानी आपका मन हल्का कर देती है, उलझन में हो तो किसी महान व्यक्ति की जीवनी आपको रास्ता दिखा देती है, आप जिज्ञासु हो तो विज्ञान की किताब आपके सामने ब्रह्मांड के रहस्य खोल देती है, और जब आपको लगे कि आपकी समस्या सबसे बड़ी है, तब किसी दूसरे व्यक्ति के संघर्ष की कहानी बताती है कि मुश्किल रास्तों पर भी आगे बढ़ा जा सकता है। और जानते हैं दोस्तों, किताबें हमें केवल उत्तर ही नहीं देती, वे सही सवाल पूछना भी सिखाती हैं। जब हम कोई कहानी पढ़ते हैं तो हमारे सामने केवल शब्द होते हैं, लेकिन हमारा मस्तिष्क उन शब्दों से पूरा संसार बना लेता है। एक पुराना मकान, इतना पढ़ते ही कोई टूटी खिड़की की कल्पना करता है, कोई लंबा बरामदा देखता है तो किसी को लकड़ी का चरमराता हुआ दरवाजा दिखाई देने लगता है। यानी लेखक कुछ शब्द लिखता है, लेकिन दृश्य हमारा दिमाग बना लेता है। ध्यान लगाने की क्षमता बढ़ती है, भाषा समृद्ध होती है, और यही कारण है कि नियमित पढ़ने से कल्पना शक्ति मजबूत होती है और अपनी बात सही शब्दों में कहने का हुनर विकसित होता है किताबें पढ़ने से। किताबें हमें जानकार बनाने के साथ ही संवेदनशील भी बनाती हैं।

मानव सभ्यता की यात्रा में दोस्तों किताबों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। एक समय था जब ज्ञान पत्थरों, भोजपत्रों, ताड़पत्रों और हाथ से लिखी पांडुलिपियों में सुरक्षित रखा जाता था। एक पुस्तक तैयार करने में कई महीने, कभी कभी तो कई वर्ष लग जाते थे। बाद में छापे खाने का विकास हुआ और पुस्तकों की प्रतियां तेजी से बनने लगी। जो ज्ञान पहले केवल कुछ लोगों तक सीमित था, वो धीरे धीरे सामान्य लोगों तक पहुंचने लगा। विज्ञान की खोजें, यात्राओं के अनुभव, चिकित्सा का ज्ञान, दर्शन, इतिहास, लोक कथाएं और साहित्य एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक किताबों के माध्यम से पहुंचते गए। तो यहाँ ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि किताबें मानवता की सामूहिक स्मृति हैं। हमसे सदियों पहले रहने वाला व्यक्ति आज हमारे सामने उपस्थित नहीं हो सकता, लेकिन उसके विचार किसी पुस्तक में आज भी जीवित हैं। हम उसके अनुभवों से सीख सकते हैं, उसकी सफलताओं को समझ सकते हैं और उसकी गलतियों को दोहराने से बच सकते हैं। यही किताबों का जादू है कि वो समय की दूरी मिटा देती हैं।

और आज के डिजिटल दौर में तो सबसे बड़ा सवाल है मोबाइल। वीडियो और इंटरनेट के दौर में क्या किताबों की जरूरत कम हो गई है? तो हम कहेंगे बिल्कुल नहीं। डिजिटल माध्यम हमें तेजी से जानकारी देते हैं। ईबुक और ऑडियो बुक ने पढ़ने सुनने को और सुविधाजनक बनाया है, लेकिन बिना सोचे समझे स्क्रीन पर लगातार सामग्री बदलते रहने और ध्यान से किसी विषय को पढ़ने में बहुत अंतर होता है दोस्तों।

अब जैसे छोटा वीडियो हमें किसी विषय से परिचित करा सकता है, पर उसकी गहराई समझने के लिए पढ़ना तो पड़ता ही है। तो किताबें सचमुच दिल को संवेदना, दिमाग को विचार और जीवन को नई दिशाएं देती हैं। तो अगली बार जब आपको लगे कि समय नहीं कट रहा है, आपका मन उलझा हुआ है, कोई नया विचार चाहिए या दुनिया को किसी नए दृष्टिकोण से देखना है, तो दोस्तों किताबों से दोस्ती कीजिए। ये दोस्ती न केवल आपका समय संवारेगी, बल्कि धीरे धीरे आपके विचारों, आपकी भाषा और आपके व्यक्तित्व को भी समृद्ध कर देगी। तो आज की विविधा में बस इतना ही। मिलेंगे इसके अगले अंक में अन्य विषय के साथ। कीजिए स्वीकार हमारा प्यार भरा नमस्कार।

हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 7:18 कुछ ही पलों में होने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से प्रसारित प्रादेशिक समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
1: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
0: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
2: चलिए सुबह का पहला संकल्प ये लें कि मैं दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा, केवल भगवान से डरूं। मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं,

0: मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं। मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
1: मन का धर्म है मनन करना। मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविन्द्रनाथ ठाकुर।
0: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। APJ अब्दुल कलाम।
1: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
0: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं। सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। APJ अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
1: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं वैष्णवी त्रिपाठी। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के अवसर पर प्रदेश के 5 शिक्षकों सहित देश के 69 शिक्षकों को किया सम्मानित। कहा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के जरिए ही हासिल होगा विकसित भारत का लक्ष्य। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में 81 शिक्षकों का किया सम्मान। उत्कृष्टता और नवाचार को लेकर प्रतिस्पर्धा आगे बढ़ाने के लिए शिक्षकों को किया आह्वान। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्राविधिक शिक्षा अध्यापन परीक्षा आज। राज्य के 6 जिलों में 2 पालियों में होगा परीक्षा का आयोजन। और प्रदेश की कई नदियां उफान पर, 24 जिले बाढ़ से हुए प्रभावित। मुख्यमंत्री ने वाराणसी में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया हवाई सर्वेक्षण। पीड़ितों में बांटी राहत सामग्री। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के अवसर पर कल नई दिल्ली में उत्तर प्रदेश के 3 शिक्षकों सहित देश के 48 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया। राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित होने वाले प्रदेश के शिक्षकों में गाजियाबाद की रेणु त्रिपाठी, कौशाम्बी की शालिनी कुशवाहा और बलिया के डॉ. इफ्तिकार खान शामिल रहे। कार्यक्रम में राष्ट्रपति ने उच्च शिक्षण संस्थानों और पॉलिटेक्निक के 21 शिक्षकों और संकाय सदस्यों को भी राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किए। इस श्रेणी में बीएचयू के प्रोफेसर आशुतोष मोहन और आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर शंकर प्रसाद रथ को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के जरिए ही विकसित भारत का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है।
1: आम सभी देशवासी विकसित भारत के निर्माण के लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ रहे हैं। विश्व स्तरीय शिक्षा व्यवस्था के बल पर ही विकसित भारत का निर्माण संभव है। हमारे शिक्षक शिक्षा व्यवस्था में प्राणवायु का संचार करते हैं। हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि हमारे देश में एक भी विद्यार्थी अच्छी शिक्षा के अवसर से वंचित न हो।
0: राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित होने पर बलिया के डॉक्टर इफ्तिकार खान ने कहा कि पुरस्कार मिलने के बाद छात्रों को और बेहतर मार्गदर्शन देने की ऊर्जा मिली है।
2: मैंने नवाचार शिक्षा पे ज्यादा बल दिया, न कि कॉपी कराने पे, और पुरस्कार मिलने से बहुत खुशी हो रही है। लेकिन साथ ही अभी कहेंगे, पुरस्कार मिलने के बाद और जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती है, क्योंकि लोगों की अपेक्षाएं बढ़ जाती है।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित होने वाले शिक्षकों के साथ बातचीत की। इस दौरान श्री मोदी ने कहा कि शिक्षकों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हर विद्यार्थी के भीतर का बचपन जीवंत रहे। प्रधानमंत्री ने बच्चों में अत्यधिक स्क्रीन समय पर चिंता जताई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में 81 शिक्षकों को राज्य अध्यापक पुरस्कार और मुख्यमंत्री अध्यापक पुरस्कार से सम्मानित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने शिक्षकों से उत्कृष्टता और नवाचार को लेकर प्रतिस्पर्धा आगे बढ़ाने का आह्वान किया।
3: जो टीचर टैलेंट एंड ट्रांसफॉर्मेशन

0: शिक्षा मित्रों का मानदेय था मात्र 3000 रुपये, आज मिलता है 18000 रुपये। अनुदेशकों का मानदेय अब 17000 रुपया हुआ, लेकिन साथ साथ 5 लाख का कैशलेस की स्वास्थ्य की सुविधा भी उन्हें दी गई है।
1: राज्य स्तरीय पुरस्कार प्राप्त इन शिक्षकों को आजीवन उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों में प्रतिवर्ष 4000 किलोमीटर की निःशुल्क यात्रा की सुविधा मिलेगी। साथ ही इनकी सेवानिवृत्ति की सीमा भी 2 वर्ष बढ़ जाएगी। प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य डॉ. दिनेश शर्मा को अंडमान निकोबार का उप राज्यपाल नियुक्त किया गया है। वह वर्तमान उप राज्यपाल डीके जोशी का स्थान लेंगे। उप राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के बाद आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में डॉ. दिनेश शर्मा ने कहा कि वह मानते हैं कि हर जिम्मेदारी बड़ी होती है और प्रधानमंत्री जी ने जो विश्वास उनके ऊपर जताया है वह उसे पूरा करेंगे।
2: मैं समझता हूँ कि एक हर जिम्मेदारी बड़ी होती है। अब जो प्रधानमंत्री जी का विश्वास है उसको पूरा करूँ, यही मेरी इच्छा है। हमेशा मैं एक कार्यकर्ता की तरह रहा हूँ, तो जो भी हमारे पार्टी का नेतृत्व आदेश देता है वो सिद्ध करना हमारा काम।
1: भारत और नेपाल के बचाव दल का चिले में सुरंग में बचाव अभियान जारी है। नेपाल में भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने बताया कि बचाव अभियान को सुगम बनाने के लिए पास के स्याफरुबेसी से सुरंग के प्रवेश द्वार तक एक पहुंच मार्ग का निर्माण भी चल रहा है। विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 1344 हो गई है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR News गोरखपुर और X हैंडल AIR News _GKP पर भी उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्राविधिक शिक्षा अध्यापन परीक्षा 2025 आज 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा लखनऊ समेत राज्य के 6 जिलों में होगी। परीक्षा के लिए प्रयागराज में 25, मेरठ में 33, कानपुर में 28 और गोरखपुर में 44 केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा को नकल विहीन और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। 19 विभिन्न विषयों के व्याख्याता पदों के लिए होने वाली परीक्षा में परीक्षार्थियों को केंद्र पर 1 घंटे पहले पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश में भारी बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण वर्तमान में 24 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। राज्य की कई नदियां अब भी उफान पर हैं। बदायूं, गाजीपुर और बलिया में गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। फरुखाबाद में गंगा नदी खतरे के निशान के नजदीक पहुंच गई है। वहीं लखीमपुर खीरी और बाराबंकी में शारदा तथा अयोध्या और तुर्तीपार बलिया में घाघरा नदी का जलस्तर भी खतरे के निशान के पार पहुंच गया है। चित्रकूट के राजापुर में यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री आज मंदाकिनी नदी से आई बाढ़ का जायजा लेने के लिए चित्रकूट जाएंगे। वहां वह बाढ़ प्रभावित लोगों से संवाद करने के बाद जरूरतमंद परिवार को राहत सामग्री वितरित करेंगे। मुख्यमंत्री ने कल वाराणसी में वरुणा नदी के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बाढ़ राहत शिविर में पहुंचकर पीड़ितों से मुलाकात की और राहत सामग्री बांटी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और प्रदेश की सरकार इस आपदे में पीड़ितों के साथ है। उन्होंने कहा कि सभी संवेदनशील क्षेत्रों में प्रशासन की ओर से राहत कार्य जारी है। बारिश और बाढ़ के कारण जनहानि, पशुहानि और मकानों को हुई क्षति का आकलन कर मुआवजे का वितरण किया जा रहा है।
3: आदरणीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर मैं स्वयं यहाँ पर आया हूँ वाराणसी में इस क्षेत्र का निरीक्षण करने के लिए। यहाँ पर बचाव के लिए 48 नाव, NDRF, PAC और जल पुलिस की टीम भी 24 घंटे उन क्षेत्रों में सक्रिय की गई है। बाढ़ आएगी तो बीमारी भी आएगी, उसके बचाव के लिए मेडिकल के शिविर लगाए जा रहे हैं। जिनके पास आयुष्मान के कार्ड नहीं है वहाँ उन्हें आयुष्मान के कार्ड भी उपलब्ध करवाए जा रहे हैं और फ्री में दवा भी उपलब्ध करवाई जा रही है।
1: उधर मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक प्रदेश के पूर्वी हिस्से और आगामी 2 दिनों में पश्चिमी जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने UGC नेट जून 2026 के अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र विषय की पुनर्परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। अंग्रेजी की परीक्षा 9 सितंबर को सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक होगी। वाणिज्य की परीक्षा उसी दिन दोपहर 3 से शाम 6 बजे तक होगी। समाजशास्त्र की परीक्षा 10 सितंबर को सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक होगी। इन 3 विषयों की परीक्षा पेपर में कुछ गलतियों की शिकायतों के बाद दोबारा आयोजित की जा रही है। मिर्जापुर जिले के अहरौरा थाना क्षेत्र के भगवती देई पहाड़ी में कल स्टोन क्रशर में ब्लास्ट के दौरान एक कमरा ढह गया, जिसमें दबकर चार मजदूरों की मौत हो गई। मरने वाले सभी चार मजदूर सोन

भद्र जिले के रहने वाले थे। वहां के जिलाधिकारी ने दुर्घटना के कारण की जानकारी के लिए सुरक्षा मानकों की जांच के निर्देश दिए हैं। उधर कौशाम्बी जिले के महेवा घाट थाना क्षेत्र के घोगपुर गांव में कल यमुना नदी में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो जाने की खबर है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से 3 बच्चों के शव बरामद कर लिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस घटना का संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता के निर्देश दिए हैं। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के अवसर पर प्रदेश के 5 शिक्षकों सहित देश के 69 शिक्षकों को किया सम्मानित। कहा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के जरिए ही हासिल होगा विकसित भारत का लक्ष्य। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में 81 शिक्षकों का किया सम्मान। उत्कृष्टता और नवाचार को लेकर प्रतिस्पर्धा आगे बढ़ाने के लिए शिक्षकों का किया आह्वान। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्राविधिक शिक्षा अध्यापन परीक्षा आज। राज्य के 6 जिलों में 2 पालियों में होगी परीक्षा का आयोजन। और प्रदेश की कई नदियां उफान पर, 24 जिले बाढ़ से हुए प्रभावित। मुख्यमंत्री ने वाराणसी में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया हवाई सर्वेक्षण। पीड़ितों में बांटी राहत सामग्री। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
1: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा तीन आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।

एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का स्वागत है हमारे मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ में, जिसे आपने ट्यून इन किया है 747 किलोहर्ट्ज पर। आकाशवाणी लखनऊ के कार्यक्रमों का प्रसारण आप सुन सकते हैं न्यूज ऑन AIR ऐप और DTH के माध्यम से भी। श्रोताओं, समय है शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम का। आज इस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं गुलशन भारती का राग मिश्र बसंत बुखारी में गाई ठुमरी। जत ताल में निबद्ध ठुमरी के बोल हैं जागे नैना रतनारे।

अभी आप सुन रहे थे गुलशन भारती की राग मिश्र बसंत बुखारी में गाई ठुमरी। आप सुन रहे हैं शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से, और अब आइए सुनते हैं गुलशन भारती का राग मिश्र भैरवी में गाया दादरा। बोल हैं ना करो बरजोरी।

0: ना करो बरजोरी, मैं ना जई हूं राजा। अभी आप सुन रहे थे गुलशन भारती की राग मिश्र भैरवी में गाया ये दादरा। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ, आकाशवाणी लखनऊ से वैशाली के साथ। नमस्ते लखनऊ मॉर्निंग प्रोग्राम को वाइंड अप करने का वक्त हो चला है, तो दीजिए अनुमति हमें कार्यक्रम संपन्न करने की। नमस्कार श्रोताओं, बने रहिए 747 किलोहर्ट्ज पर और सुनते रहिए आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र। हमारा अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होगा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील, भारतीय युवा परामर्श, लेखा, वित्त और कानून से जुड़ी ऐसी संस्थाओं का निर्माण करें जो वैश्विक स्तर के हों। भाजपा के राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया। एनआईए की विशेष अदालत ने 2013 में छत्तीसगढ़ के झीरम घाटी हत्याकांड में 10 माओवादियों को दोषी ठहराया। नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को पहले आई ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान 500 से अधिक संस्थागत निवेशक, वित्त मंत्री और उद्योगपति शामिल होंगे। भारत ने दुबई में महिला T20 क्रिकेट एशिया कप मैच में पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से बड़े सपने देखने तथा लेखा, वित्त, कानून और परामर्श से जुड़ी ऐसी संस्थाओं के निर्माण की अपील की है जो वैश्विक स्तर के हों। कल दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में उन्होंने कहा कि आज भारतीय मूल के कई लोग दुनिया की शीर्ष कंपनियों का नेतृत्व कर रहे हैं।
2: भारत की ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म्स क्यों नहीं हो सकती? हमारी अकाउंटिंग फर्म, हमारी लीगल फर्म, हमारी फाइनेंशियल फर्म, ये सब ग्लोबल लीडर्स क्यों नहीं बन सकती? हम गर्व से कहते हैं कि आज भारतीय दुनिया की टॉप कंपनीज को लीड कर रहे हैं। अगर भारतीय दुनिया की टॉप कंपनियों को लीड कर रहे हैं तो भारतीयों की बनाई कंपनियां दुनिया को क्यों लीड न करें?
1: श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितता के बीच भी भारत की तिमाही वृद्धि दर 7.8% रही है, जो उसकी आर्थिक क्षमता को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि भारत ने नीतिगत मामलों में गतिरोध से गतिशीलता तक का लंबा सफर तय किया है और दुनिया देख रही है कि भारत सबसे तेजी से आर्थिक प्रगति कर रहा है। प्रधानमंत्री ने बताया कि अप्रैल से जून के बीच बिजली उत्पादन में 9% की वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि इस दौरान वाहनों की बिक्री 20% से अधिक बढ़ी है। उन्होंने बताया कि स्मार्टफोन का निर्यात अब 25 लाख करोड़ रुपए से अधिक का है और घरेलू रक्षा उत्पादन लगभग 2 लाख करोड़ रुपए के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है। श्री मोदी ने कहा कि 140 करोड़ भारतीय मिलकर देश को विकसित और आत्मनिर्भर बनाएंगे।
2: मुझे विश्वास है हम 140 करोड़ भारतीय मिलकर अपने देश को विकसित भी बनाएंगे, आत्मनिर्भर भी बनाएंगे। आने वाले समय में भारत मैन्युफैक्चरिंग का हब होगा। आने वाले समय में रिसर्च एंड इनोवेशन का हब हिंदुस्तान होगा। भारत

0: एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट की सुपर पावर होगा।
1: गृह मंत्री अमित शाह आज गोवा में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री शाह आज गृह मंत्रालय की बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे।
2: अमित शाह का आज का दौरा कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों से जुड़ा है। गृह मंत्रालय की बैठक में गोवा से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। बाद में बीजेपी के नए राज्य कार्यालय अटल भवन का उद्घाटन किया जाएगा। दिन के अंत में पार्टी की राज्य कोर कमेटी की बैठक भी होगी। कल अमित शाह पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल होंगे और गोवा पुलिस को प्रेसिडेंट पुलिस कलर प्रदान करेंगे। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
1: डॉक्टर दिनेश शर्मा को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। वे अवकाश प्राप्त एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी का स्थान लेंगे। डॉक्टर शर्मा फिलहाल उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद हैं। वे राज्य के उप मुख्यमंत्री भी